ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।

सुधा मल्होत्रा के गाए भक्ति गीत के बाद अब प्रस्तुत है कबीर दास की रचना शांता सक्सेना की आवाज़ में।

महेंद्रपाल सिंह एवं साथियों के गाए इस शब्द के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें नारियल के बागानों में खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग के संदर्भ में। नारियल हमारे इन द्वीपों की मुख्य बागानी फसल है और अक्सर किसान भाइयों के पास नारियल के बागान हैं। लेकिन नारियल के इन बागानों से जितना उपज हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता और वृक्षों की जो उत्पादन क्षमता है वो बहुत ही कम है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला तो अच्छी प्रजाति के पौधे का ना होना, ठीक प्रकार से देखभाल ना करना और सबसे बड़ी बात है कि खाद एवं उर्वरकों का समय पर प्रयोग ना करना। अगर किसान भाई समय समय पर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग नारियल के बागानों में करें तो अपने बागान से अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक खाद की मात्रा के निर्धारण का सवाल है, नारियल की पौध लगाने से पहले किसान भाइयों को अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। खेत की मिट्टी की जांच से इस बात का साफ साफ पता चल जाएगा कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है और उसी के आधार पर खाद एवं उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण हम कर सकते हैं। वैसे छोटे पौधे को खाद कम मात्रा में देना चाहिए और जैसे जैसे पौधों की उम्र बढ़ती जाए खाद की मात्रा भी प्रतिवर्ष बढ़ाते जाना चाहिए। किसान भाइयों, जब पौधा अपनी वयस्क उम्र में पहुंच जाए तो उसके बाद खाद एवं उर्वरकों की एक निश्चित मात्रा प्रतिवर्ष पौधों को देनी चाहिए। इस प्रकार नारियल के पौधों में उर्वरक पौध लगाने के 3 माह बाद प्रयोग करें। यदि आप मई जून के महीने में पौधे लगाते हैं तो उनमें उर्वरकों का प्रयोग सितंबर अक्टूबर में करें। प्रत्येक पौधे में 110 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 225 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। उर्वरकों की इतनी ही मात्रा दूसरे वर्ष मई जून में प्रयोग करें। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में 240 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 450 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग प्रति पेड़ के हिसाब से करें। किसान भाइयों, 3 साल के नारियल के पौधों में मई जून के माह में उर्वरकों की इतनी ही मात्रा का प्रयोग करें, यानी 240 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 450 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। लेकिन 3 साल के नारियल के पौधों में सितंबर अक्टूबर के माह में 400 ग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 900 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा दें। इसी प्रकार 4 साल के पौधे में 660 ग्राम यूरिया, 1250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 1320 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा देना चाहिए। तत्पश्चात प्रतिवर्ष चौथे साल वाली मात्रा का प्रयोग करते रहें। उर्वरकों के इस्तेमाल में भी कुछ एक बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पौधे के तने से पर्याप्त दूरी छोड़कर एक नालीनुमा 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा बेसिन बनाएं। उर्वरकों का प्रयोग इसी बेसिन में करें और बाद में मिट्टी से ढक दें। उर्वरकों का प्रयोग करते समय इस बात पर विशेष ध्यान दें कि पौधे की पत्ती, तना या जड़ के सीधे संपर्क में उर्वरक न आए। पौधों में नाइट्रोजन कण कलिकायन तथा वानस्पतिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में तैयार होगा जो कि फल बनने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर फास्फोरस पौधों में फूल लगने, फलों में बीज बनने तथा समय पर परिपक्व करने में मदद करता है। पोटाश पौधों के फल की क्वालिटी को अच्छा बनाता है तथा पौधों में कीट व बीमारियों के लिए

0: अवरोधक का काम भी करता है। इसलिए किसान भाइयों, अपने नारियल के बागानों से अधिक उपज लेने के लिए समय समय पर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग अवश्य करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी

0: Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Chasing 201 for victory, Mumbai Indians overhauled the target with 6 wickets in hand and 1 ball to spare. Earlier put into bat, Punjab Kings scored 200 for 8 in the stipulated 20 overs. Unbeaten, Tilak Verma contributed brilliant 75 off 33. He was adjudged player of the match. Today, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings in Lucknow at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी स्टेट आइलैंड मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल प्रातः 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। जलयान सिंधु लिटिल अंडमान के लिए आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल सवेरे 10 बजे लिटिल अंडमान से। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर कल प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान रविवार 17 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। जलयान सिंधु मंगलवार 19 तारीख को सुबह 9 बजे कैंबल बे जाएगा तथा इसकी वापसी होगी बृहस्पतिवार 21 तारीख को प्रातः 6 बजे कैंबल बे से श्री विजयपुरम के लिए। जाते व आते समय ये जलयान नानकौरी और कचाल में भी रुकेगा। एमवी हटबे शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी हटबे कल प्रातः 7 बजे रंगत के लिए प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी होगी परसों रविवार 17 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए। जाते व आते समय ये जलयान शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतल्ला और लॉन्ग आइलैंड में भी रुकेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा।

0: दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी पंबुका स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी बाराटान शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

दोस्तों, इंद्रधनुष कार्यक्रम में सभी सुनने वालों को रतिका का नमस्कार। कार्यक्रम में आज का विषय है साथ साथ। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि अपने लोग साथ हो, फिर हर खुशी थोड़ी और बड़ी लगने लगती है और हर मुश्किल थोड़ी आसान।

दोस्तों, कभी कभी सफ़र ही सबसे खूबसूरत एहसास बन जाता है। जैसे हवा साथ साथ चल रही हो, बादल हम सफ़र बन गए हों और दिल हर मोड़ पर एक नई खुशी महसूस करता हो।

जब किसी का साथ दिल को सुकून देने लगे तो हर मोड़ थोड़ा आसान लगने लगता है। फिर ज़िंदगी की राहों को बस यही महसूस होता है कि अपना कोई हमसफर साथ चल रहा हो।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही अपनी रेडियो दोस्त रितिका को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत।
1: इंद्रधनुष।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान की 239वीं कड़ी।

भरत के साथ अयोध्या का समस्त समाज अवधपुरी के मार्ग पर उदास लौट रहा है। सभी श्री राम के विरह में विह्वल हैं। ऐसी मनोदशा में स्नान भोजन की सुधि किसे होगी? यमुना, गंगा तथा गोमती को पार कर चौथे दिन लोग अयोध्या पहुंचे। मंत्री गुरुवर वशिष्ठ की देखरेख में भरत को राज्य सौंप सहेज कर मिथिलापति 4 दिनों बाद तिरहुत लौट गए। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके गुरुजन तथा माताओं की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर धर्म की धुरी धारण की। नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहां निवास करने लगे।

श्रोताओं, अभी आप रामचरितमानस गान की 239वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन तथा संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक होगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक हो सकती है और समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को मंगलवार 19 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। जन सेवाओं को मौसम संबंधित चेतावनी दी जाती है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो भागों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, साथ ही गरज के साथ 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप आनंद ले सकेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे सुरेश वाडकर और मोहम्मद रफ़ी। फिल्मी गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9 बजे तराने सुहाने कार्यक्रम में। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गंगूबाई हंगल का गायन प्रसारित किया जाएगा। संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1285वीं कड़ी। 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम में सुनिए लोकप्रिय गीत। तेलुगु में दोपहर 12 बजे होगा युवाणी कार्यक्रम। मलयालम में 12:30 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर टी सुगनाथन वर्कला की वार्ता होगी, विषय रहेगा चिकन पॉक्स और होम्योपैथी इलाज। महफिले कवाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे दोपहर 1:10 पर रानी रूपलता, अर्शी बेगम, यूसुफ आज़ाद और महेंद्र कपूर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे एक ही श्रोता के पसंद के गीत। आधुनिक गीतों का आनंद लीजिए बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में जसिंता बाघे से बातचीत की जाएगी, विषय रहेगा द्वीपों में हल्दी की खेती। समाचार तरंगिणी सुनिए 6:30 पर। 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 8वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:55 पर। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जनसूचनाएं दी जाएंगी 7:15 पर। 7:20 पर होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30 पर होगा फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात 8 बजे। 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात होगा कार्यक्रम गौरव गान और रात 10 बजे आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम संदेशे आते हैं का।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिस्सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनं एकादशोत्तर एकशतं जनाः मृताः द्विशताधिकाः जनाः व्रणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुर मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते शतं किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट्स्तोभकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्ध सप्तवादने लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

स्थानीय मौसम कार्यालय से आज सवेरे प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 11.7 मिलीमीटर वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 90% तथा न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 31.3 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय सवेरे 4:56 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:36। मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप आनंद ले सकेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे सुरेश वाडकर और मोहम्मद रफी। तत्पश्चात सवेरे 9 बजे आनंद ले सकेंगे आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने में। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गंगूबाई हंगल का गायन प्रसारित किया जाएगा। विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सुबह 10 बजे।

दिन के 11 बजे प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1285वीं कड़ी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन बस कुछ ही पलों बाद।

सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय की। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। द्वीप समूह में कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 81.08 रहा और खराब मौसम के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के तहत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। जनजातीय सांस्कृतिक समागम के अवसर पर 24 मई को महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के लाल किला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस समागम में देश भर के 500 से अधिक जनजातियों के 1.5 लाख प्रतिभागियों के उपस्थित होने की संभावना है। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो 5 विभिन्न स्थलों से प्रारंभ होकर जनजातीय परंपराओं का प्रतिनिधित्व करेगी। ये यात्रा लाल किले पर संपन्न होगी जहां गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्री विजयपुरम में 8 जून से सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज और माननीय न्यायाधीश ऋतुव्रत कुमार मित्रा मामलों की सुनवाई करेंगे। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वीप समूह में त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम लिंग वर्गीकृत वीर योजना को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है जो डेयरी किसानों के लिए उपयोगी होगा। ये योजना उन्नत प्रजनन तकनीक किसानों को अपने डेयरी पशुओं को दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। वर्तमान में उन्नत जर्सी क्रॉस ब्रीड और साहिवाल नस्ल के लिंग वर्गीकृत वीर्य की खुराकें सभी पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से किसानों को अत्यधिक रियायती दर पर मात्र 250 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसानों की पूर्ण संतुष्टि न होने पर इस योजना में पैसे वापसी की नीति भी शामिल है। विभाग ने द्वीप समूह के सभी पशुपालक किसानों से अपील की है कि वे पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम पशु चिकित्सा अस्पताल अथवा औषधालय से संपर्क किया जा सकता है। सशस्त्र पुलिस इकाई की ओर से पुलिस उड़ान समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप 18 मई से 17 जून तक पुलिस लाइन में निःशुल्क आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एक रचनात्मक, आकर्षक और ज्ञानवर्धक मंच प्रदान करना है। इस कैंप में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी पेशेवर

प्रशिक्षक और विशेषज्ञ प्रतिभागियों को उन गतिविधियों के माध्यम से मार्गदर्शन देंगे जिनका उद्देश्य शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य, रचनात्मकता, टीम वर्क, आत्मविश्वास निर्माण और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा है। ये सत्र सप्ताह के दिनों और शनिवार को विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे जिनमें पुलिस लाइन और नेताजी स्टेडियम शामिल हैं। इच्छुक प्रतिभागी सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच पुलिस लाइन स्थित पुलिस परिवार कल्याण केंद्र के प्रभारी के पास अपना नाम पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि कल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन AISSCE की ओर से 13 मई को कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित किए गए। CBSE वेबसाइट से डाउनलोड किए गए नतीजों के अनुसार द्वीप समूह के सभी मैनेजमेंट स्कूलों से कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए 4,948 छात्रों में से 4,012 छात्र पास हुए हैं, जबकि 524 छात्रों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है। द्वीप समूह का कुल पास प्रतिशत 81.08 रहा। हालांकि 10 स्कूलों ने 100% नतीजे हासिल किए। इन स्कूलों में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जवाहर नवोदय विद्यालय छोलदारी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंगाली, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लॉन्ग आइलैंड, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तुष्णाबाद, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय लंबा लाइन, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, NCS मिनीबे, सरस्वती शिशु मंदिर और सेंट जेवियर स्कूल मनारघाट शामिल हैं। द्वीप समूह के एक या दो जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर तक रहेगी, जिससे समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 19 मई तक समुद्र में ना जाएं। पुलिस विभाग में विभिन्न ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 मई की मध्य रात्रि तक कर दी गई है। पात्रता की शर्तें और अन्य निर्देश संदर्भ के लिए उपलब्ध पूर्ण भर्ती सूचना में विस्तार से दिए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए संशोधन खिड़की 28 मई की मध्य रात्रि तक खुली रहेगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भर्ती प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। कार्मिक विभाग ने अमेलगमेटेड क्लरिकल कैडर के कर्मचारियों को MSAP योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन देने के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय स्क्रीनिंग समिति की एक बैठक आयोजित की है। विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के अनुसार 1 ग्रुप बी राजपत्रित, 54 ग्रुप बी अराजपत्रित और 7 ग्रुप सी कर्मचारियों को इस योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया गया है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन ने विज्ञान केंद्र के सहयोग से राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया। इस राज्य स्तरीय शिविर में 21 दिसंबर 2025 को आयोजित कक्षा 6 से 11 तक के चुने गए छात्रों को विजेता के रूप में चुना गया। प्रत्येक कक्षा से प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को कल और 17 मई को IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय शिविर में भाग लेने के लिए चुना गया है। ये छात्र IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय शिविर में भाग लेने के लिए द्वीपों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा समाचार हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 81.08% रहा। इस समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाई है। अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने 3 दिवसीय बुनियादी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाचार को अपने पहले पन्ने में जगह दी है। इन्फो इंडिया ने सांसद द्वारा उपराज्यपाल से द्वीप समूह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश करने के समाचार को अपनी पहली खबर बनाई है, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने निम्बूतला में राजस्व शिविर आयोजित करने के समाचार को अपने पहले पन्ने के

निचले हिस्से में जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय की। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। द्वीप समूह में कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 81.08 रहा और खराब मौसम के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0.08 रहा और खराब मौसम के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागिनी कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। दोस्तों, जब बात हो अपने वतन की तो हर दिल में एक अलग ही जुनून जाग उठता है। लेकिन दोस्तों, वतन से प्यार सिर्फ बातें नहीं, कर्म मांगता है। जब हर नागरिक अपने कर्म को ईमानदारी से निभाता है, तभी तो बनता है हमारा राष्ट्र महान। इसलिए आइए करते हैं संकल्प की अब से हम अपना हर कर्म करेंगे। ए वतन, तेरे लिए।

हमारी आन बान शान का प्रतीक है ये तिरंगा। दोस्तों, तीन रंगों में तिरंगा ये तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, बल्कि इसके तीनों रंगों में त्याग, शांति और समृद्धि का संदेश छिपा है। जब तिरंगा लहराता है तो हर भारतीय के का सिर गर्व से ऊंचा ही हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं।

दोस्तों, ये धरती केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ऋषियों, वीरों और बलिदानों की पावन भूमि है। यहाँ की मिट्टी में प्रेम है, संस्कृति है और देशभक्ति की अमिट पहचान है। ये धरती है हमारे देश हिंदुस्तान की।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। दोस्तों, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। बिना कठिनाइयों के मिली सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और मेहनत बनाए रखता है, वही एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसलिए धैर्य और संघर्ष करते रहिए, अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए।

श्रोताओं, आज है शुक्रवार। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 25वीं तिथि यानी 15 मई सन 2026। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे दोस्तों, परिवार केवल खून के रिश्तों का नाम नहीं होता, बल्कि वह एहसास होता है जहां प्रेम, विश्वास, अपनापन और सहारा हमेशा साथ रहता है। जीवन की हर कठिनाइयां आसान लगने लगती है जब परिवार का साथ हमारे पास होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर अपने परिवार के साथ समय बिताइए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी ताकत परिवार ही होता है।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।
1: हाय हो,

0: जावेद अख्तर का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत पद किया हुआ ये गीत था तेजाब फिल्म से। आवाज़ें थी अलका याग्निक और साथियों की। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में साजन फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा समीर ने, संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने।

और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में तैयार गीत दिल तो पागल है फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की, गीत रचना आनंद बख्शी की।

दोस्तों, रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं। अगर कोई मोती टूट कर गिर भी जाए तो उसे झुक कर उठा लेना चाहिए, क्योंकि रिश्तों को बनाए रखने के लिए अहंकार नहीं बल्कि समझदारी और प्यार की ज़रूरत होती है। इसलिए समझदार बने और रिश्तों में मिठास बनाए रखें। इसी विचार के साथ दीजिए कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं, साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें

0: इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपये और डीजल 93.14 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपये और डीजल 95.13 रूपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा

0: हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालेंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम

0: उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, दो दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने सीयूईटी यूजी में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, एनटीए का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा

0: hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold in women's 52 kg category in Santa World Cup in Macau. That's all in Morning News. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं सुरेश वाडकर और मोहम्मद रफी। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरेश वाडकर की गाई इस गजल से।

0: सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुरेश वाडकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में चंद गीतों एवं गज़लों का लुत्फ ले रहे थे।
1: लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स आप सुनते हैं सोमवार बुधवार और शुक्रवार को। समय दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। अब स्टूडियो से प्रेजेंटर्स आपको फोन करते हैं और मनपसंद गीतों से सजाते हैं महफिल को। अब तक आपने अपना नाम पता व फोन नंबर हमारे पास दर्ज ना कराया हो तो जल्दी से दर्ज कराएं इस नंबर पर 9474234000। इस प्रोग्राम का भरपूर आनंद आप लेते हैं हमारे विविध भारती FM श्री विजयपुरम चैनल पर सप्ताह के 3 दिन 2:30 बजे से।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए आपकी कसम फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई आरडी बर्मन ने।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए राजा रानी फिल्म का ये गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की, स्वर दिया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: तराने सुहाने कार्यक्रम में फिल्मी गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
3: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आई।
4: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
3: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
4: मैं 14 साल की हूँ।
3: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
4: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
3: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
4: धन्यवाद दीदी।
3: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouVin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
5: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.youvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
7: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
8: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0 liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just rupees 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
8: Nexa.
0: तराने सुहाने कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का लिखा एवं वसंत देसाई का संगीतबद्ध किया हुआ गीत आशीर्वाद फिल्म से। स्वर दिया मन्ना डे ने।

0: So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
1: तराने सुहाने कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का लिखा एवं वसंत देसाई का संगीतबद्ध किया हुआ गीत आशीर्वाद फिल्म से, स्वर दिया मन्ना डे ने।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था चुपके चुपके फिल्म से। गीतकार थे आनंद बख्शी तथा संगीतकार थे एसडी बर्मन। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को। फिल्म का नाम ब्रह्मचारी। हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये गीत था ब्रह्मचारी फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप गंगूबाई हंगल का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनेंगे। इनके साथ तबले पर श्री शेषगिरी हंगल, हारमोनियम पर श्री वसत कनकपुर, तानपुरे पर मदन भोंगले ने संगीति की है। तो लीजिए सुनिए गंगूबाई हंगल का गाया राग भैरव, विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गंगूबाई हंगल का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग भैरव और मियां की मल्हार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा, इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है जी। क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म, वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है।

0: और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो
1: जी
0: भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी
1: मेरे बचपन की तरफ, जहां पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था।
0: ओ
1: सो जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर, दूसरा था इंजीनियर। की ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशंस हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का।
0: जी
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया। बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ। हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। हालांकि
0: अच्छा
1: उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से
0: बिल्कुल
1: भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी। इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहां से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली। एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का,
0: हाँ
1: लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी, कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती
0: ओह सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
1: है। सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जहां पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट IT कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी एज अ यंग पर्सन, मुझे ऐसा लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है, कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को, कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
0: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
1: जी बिल्कुल।
0: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने

डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: जी दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी।

0: और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एफओस एकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
1: ओ दैट्स सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नज़रों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
0: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे

0: लर्न की प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूँ तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए थी वो थी रनिंग।
0: रनिंग।
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है
0: अच्छा, एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज़ बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स। आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं, और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है। तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है,
0: जी
1: सो दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है, ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें।
0: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए,
1: जी
0: लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
1: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं।
0: जी
1: एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है। सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके। सो
0: बिल्कुल
1: उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है। अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इम्पॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो इसीलिए जैसे आपने कहा, बहुत हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है।
1: जी
0: तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पाठ खुद क्या सीखा है?

0: आपकी नजर में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फक्र से सब आपका नाम लेते हैं?
1: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल. और तीसरी चीज़ है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज़ वॉट इज़ लीडरशिप फॉर मी.
0: दैट्स अमेजिंग. इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है, तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेज में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
0: जी.
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज अ वुमेन अगर आप मुझे पूछे तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर. बाहर सब को दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है. तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए. आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं.
0: जी बेहतरीन. मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है, ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है. तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है. हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर. और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड।
1: रिपब्लिक डे परेड,
0: हाँ जी,
1: उसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ।
0: हाँ
1: और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है
0: हाँ
1: वो परेड।

0: परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो
1: ओ
0: आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है।
1: पूरे 14 किलोमीटर तक।
0: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले, और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
1: ट्रू।
0: जब हम राजपथ पे चले तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। एक वो जो सलामी थी
1: जी।
0: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि
1: सपना।
0: उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सकें। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज पे जाना चाहूंगी जहां मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: हाँ, कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी, और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का,
1: हाँ।
0: लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा
1: वाह।
0: जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती हैं?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ।
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे, और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी।

0: हिस्ट्री, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है। बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है,
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली
1: ओह
0: हूँ।
1: माय गॉड,
0: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर
1: बेसिकली.
0: स्ट्रेंथ, वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: ऑसम, कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो. तो मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं. तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है. आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव. और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी.
0: जी
1: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
0: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है।
1: जी
0: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो।
1: हाँ
0: लेकिन
1: बिल्कुल.
0: आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
1: बहुत सुंदर.
0: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा. आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में, जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है. अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
0: इमोशनल किया हो,
1: जी
0: ऐसे तो काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजन्स हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने मतलब मेरे मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है,
1: जी
0: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना।

0: और आगे बढ़ते चले जाना है।
1: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफकैट और सीडीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए?
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना

0: देश सेवा है, तो
1: हाँ
0: इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है।
1: ओके आई गॉट द आंसर।
0: तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि फ़ौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूँगी फ़ौज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं, वो भी पढ़ाई करते रहते हैं। तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फ़ौज ज्वाइन कर लिया। तो ये एक दिमाग में ज़रूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना 12th पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपकी इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज, जो सामान्य ज्ञान होता है, उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है।
1: जी
0: उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहाँ मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी। पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही थी,
0: जी
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशंस उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये मैं करूंगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
0: बिल्कुल
1: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
0: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं, तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
1: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है, जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
0: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकते हैं?

0: पहली बात होगी, किसी चीज के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज, कोई काम करने के लिए और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापे
1: जी
0: और किसी भी चीज के लिए मना मत कीजिए। किसी भी चीज से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए। और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है। बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स। आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूँगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और दोस्तों, सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का, धन्यवाद, जय हिंद।
0: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1250वीं कड़ी।

0: नंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
0: और मैं अजीत। नमस्कार, राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं:
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव ओगाला जिला अम्बाला

0: हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण।
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल और
0: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
0: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
0: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
0: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओ, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहाँ NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
0: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोलकर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
0: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
0: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं था कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं।

0: थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं, तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है, और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है, तो थाता खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
1: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
0: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है, तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

0: आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
4: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
5: जी सुबेदार साहब।
4: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत मां

0: सत्ता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहाल।
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय, कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय तो बना दे यार, सवेर होगी।
5: हैं साहब।
0: ओए वो फायर है, कमेंट कर, खाने चुका।

0: कड़ाके की ठंड थी।
1: तेजा सिंह और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
2: ऐसा

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।

0: And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. Then he stared at the pool in surprise, for out come sandy-colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. "Don't you like it?" said all the creatures in surprise. "Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and picker yourself. Come, come, join in the fun." Hari leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool. And when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hari saw that they had forgotten him for a time. So he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks.
1: "They only did to me what I keep doing to the other children,"
0: he thought.
1: "But how it hurt, and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore."
2: तो श्रोताओं, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1250वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
6: सिन्ला मिनी रॉक रहमंग इंगरे तका लमक तेलंगी मीडियम वेव 438.6 meters हेक 684 kilohertz रमंग एलंगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग मिनका तलोन ही इंगला सकाम तरन्ने महावत करजोंग नलक एलहोय निकुन बनाम ही एवी भारत सीमा चू मायाबंदर तटिकलीपुर इभुरित इत तफुल रंग देता लाहदम नलग्न श्री विजयपुरम नझावान मिन इप्त सारसीन अलांग जिंगेत इत नेट कैनो दसाकाम नरांग टिकलीपुर सिक मायाबंदर अनमिन अलतालक रंचू श्री विजयपुरम सिंधु असुनगे ननंगचू लिडिल अंडमान इप्त सारसीन अलांग जिंगेत इत हेवर कैनो दबहु नलग्न हेडुवाव आझावान इलरन इफेयंग सकाम इत मजत्रकनरो तहतम नर आंगलीडिल अनमान नजुश्री विजयपुरम एमी सेंटिनल चुलीडिल अनमान तका निकुबार इभुरज इत सटकनरो तबुह नलिक नहडुवाव आझावान मिन इत सरसियन अलांग जिंगेत इत फैन कनरो तलाहरब नर आंगका निकुबार सक लिडिल अनमान अनमिन एलतालग नजुश्री विजयपुरम एमी कालिखाट चुलीडिल अनमान तका निकुबार इप्तनेट ननायका होक अलांग जिंगेत इत सटकनरो तबुह नलिक नहडुवाव आझावान मिन इप्तनेट अनायनेट अलांग जिंगेत इत फैन कनरो तलाहरब नरांगका निकुबार सिक लिडिल अंडमान अनमिन एलतालक रनचु श्री विजयपुरम सिंधु चुकचाल दनकोरी अलतालक रनचु कैम्बल बे इप्त मजुद्र सेन अलांग जिंगेत इत मजुद्र कनरो तबुह नलिक नहडुवाव आझावान मिन इप्तनेट अनायकाहुक अलांग जिंगेत इत हेवर कनरो तबुह नरांग कैम्बल बे सिख ननकोरी तकचाल अनमिन एलतालक रनचु श्री विजयपुरम अनुनुने मिनका तलुन ही इंगिला हरब इंगला सकाम।

0: em sớt nghe rồi hóa cô ra ye sa lam yên ngài
1: yên ngài
0: hò ye ta

0: nga din tayo hanga manatin ka ka tika nga petuel ne pol tami hulo ang takirang city hoy nga til nga ang nisinda nga mo hik in rich hang rong ita kasat ita fan kano tala harap nga yan
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुर केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: ആരോഗ്യരംഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം.
1: ആരോഗ്യരംഗം

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रूपये

0: की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हूँ यूसुफ तू है जुलेखा,
1: के मेरा जैसा नहीं मिलेगा, अरे जो भी मिलेगा धोखा देगा, मतलब के सब यार यहाँ है।
2: इसी के साथ महफिल कव्वाली कार्यक्रम श्रोताओं अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्यार का मौसम से। इस गीत के साथ श्रोताओं फरमाइशी संदेश हमें भेजा है जलंधर से संदीप मंकर, ज्योति मक्कर, मन्नत, भरत, कमल सैनी ने। तो आइए सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

अगला फरमाइशी संदेश हमें भेजा है श्रोताओं नया गांव से लुकस और साथियों ने। हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं रोग फिल्म का एक गीत केके की आवाज में। तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक आलौकिक चंसोलिया ने हमें फरमाइशी संदेश भेजा है। श्रोताओं, ये सुनना चाहते हैं दोस्ताना फिल्म का एक गीत, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

नवशहर पंजाब से गगनदीप थांदी तृप्ता डॉक्टर प्रियंका प्रशांत ने हमें फरमाइशी संदेश भेजा है। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म हमको तुमसे प्यार है का एक गीत। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

रतलाम एमपी से श्रोताओं हमें फरमाइशी संदेश भेजा है। जगदीश ठाकर, नयामा, श्रीमती रंजूबाई ठाकर, युवराज सिंह और शिवांगी ने। तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं की पसंद का ये गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में।

और कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म छुप छुप के का ये गीत। विजय यशुदास की आवाज में इस गीत के लिए दिल्लीपुर से हमें संदेश भेजा है शरीन ने, तो इनकी पसंद का सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी श्री विजयपुरम से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: increase to just plus 3.2% for petrol and plus 3.4% for diesel. Benchmark domestic equity indices were trading moderately higher in afternoon trade today. The Sensex rose 165 points to 75,563, while the Nifty added 47 points to 23,737 when reports last came in. Meanwhile, in the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 was trading flat, while the small-cap 100 dipped nearly 0.2% a short while ago. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas today, launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sai Raj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vithitsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discussed energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchanged key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए

0: हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
0: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे।

0: विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर की। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ न आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जनकल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान
2: जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाओ विद्युत सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो IPL में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा मध्य

0: प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेन्द्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को मंगलवार 19 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। जनसेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से हवाएं चलेंगी, साथ ही गरज के साथ 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:33 और 46

0: संपर्क स्थानीय कार्यक्रमों के साथ नमस्कार।
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।
0: बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: Dear friend, friend, friend, friend, friend, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और देर न करते हुए आरंभ करते हैं कार्यक्रम की और लेते हैं हमारा पहला कॉल। हेलो हेलो।
1: हाँ जी।
0: हेलो जी, नमस्कार जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोट जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तो सबसे पहले धन्यवाद। तो बताइएगा, आज हमारे कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, प्रेम रोग का।
0: जी,
1: मोहब्बत है क्या चीज।
0: जी, तो सुनिएगा आपकी पसंद का ये गीत।

0: इस प्यारे से गीत के बाद श्रोताओं देखते हैं अगला कॉल किन का है। हेलो डियर फ्रेंड, हेलो जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो अखिलेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो,
1: हाँ बोलिए
0: जी। तो बताइएगा आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं?
1: मैं क्या करता हूँ, मैं यूपी उत्तर प्रदेश का हूँ।
0: अच्छा, तो अपने यूपी का हाल बताइएगा। हमारे अंडमान में तो फिलहाल अभी बारिश शुरू हुई है।
1: नहीं, बारिश तो नहीं है, अभी मौसम तो ऐसे ही है।
0: अच्छा हाँ,
1: हल्का धूप है।
0: अच्छा हाँ जी। अखिलेश जी आप करते क्या हैं?
1: मैं बाहर रहता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र।
0: अच्छा, तो बताइएगा आज कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: अभी बताया था ना
0: जी, खाकी फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे? तो सुनिएगा आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? हेलो हेलो जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं विनीता कैम्बलबे से बोल रही हूँ।
0: विनीता जी, कैम्बलबे से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइएगा, आप करती क्या हैं?
1: मतलब अभी क्या कर रही हूँ?
0: जी, अभी आप फिलहाल क्या कर रही हैं?
1: कुछ नहीं, मैं बस बैठी हूँ।
0: अच्छा, तो आपके शौक क्या क्या हैं
1: जी? मुझे समझ नहीं आया।
0: जी, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं?
1: जी, मुझे गाना सुनना पसंद है।
0: अच्छा, तो बताइएगा, आज हमारे कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: विवाह मूवी का गाना सुनना चाहूंगी, मुझे हक है।
0: अच्छा, तो सुनिएगा आपकी पसंद का विवाह फिल्म का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो मैम, हम अंडमान न्यू पहाड़गांव से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, न्यू पहाड़गांव से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइएगा, फिलहाल आप करती क्या हैं?
1: बढ़िया है मैम, सिर्फ तुम देखे एक गाना
0: सुनना चाहती हैं।
1: एक मुलाकात जरूरी है सलाम।
0: अच्छा, तो सुनिएगा आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो राकेश जी
0: जी जी जी
1: जी आवाज़ आ रही है?
0: बिल्कुल आ रही है, आ रही।
1: अच्छा, थोड़ा सा रेडियो सेट दूर कीजिएगा, आवाज़ इको कर रहा है। हाँ जी, हेलो।
0: जी जी
1: हाँ जी, तो बताइएगा आप करते क्या हैं?
0: जी मैं बागवानी करता हूँ और मैं पूरा आपको सभी श्रोताओं को पूरा परिचित करता हूँ। मैं राकेश कोटाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: हाँ जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपका कॉल भी लग गया है, तो बताइएगा शिमला का मौसम कैसा है?
0: मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि
1: हाँ जी,
0: आपका नियमित श्रोता इस कार्य हो, क्योंकि मैं आपकी जितनी प्रोग्राम है सभी में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। जैसे कि आपके जो शनिवार को सुबह 7:30 बजे आता है हेलो डॉक्टर,
1: जी।
0: हाँ तो उसमें भी जुड़ते रहो। और जो सोमवार को 6 बजे आता है कृषि जगत लाइव फोन प्रोग्राम जो कृषि वस्त्र में आता है,
1: जी
0: हाँ उसमें मैं जुड़ता रहता हूँ, क्योंकि हमें आकाशवाणी से सब सुनने को मिलता है, क्योंकि आकाशवाणी से मनोरंजन नहीं समय हमें ज्ञान मिलता है। घर घर बैठे
1: जी
0: सब बात है, पशु में कौन कौन सा रोग है वो भी हम पता कर सकते हैं और हमें विस्तार से जानकारी मिल जाती है, और हेलो डॉक्टर में ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी हमें
1: जी बहुत
0: आपके
1: अच्छा
0: माध्यम
1: लगा,
0: से मिल
1: बहुत
0: जाती
1: अच्छा
0: है।
1: लगा आप हमारे कार्यक्रमों को इतने शिद्दत के साथ सुनते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी होता है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। तो बताइएगा
0: जी
1: आज कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: आज मैं गीत सुनना चाहता हूँ आंदोलन मूवी का, इतने दिनों के बाद मिले हो, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मित्रों को याद कर सकता हूँ।
1: हाँ जी, कीजिएगा
0: तो सबसे पहले तो आपको ये गाना डेडिकेट रहेगा,
1: जी। धन्यवाद
0: तो पूरण वर्मा है, भगवान सिंह परमार है, अविनाश तेली है, पूर्णिमा जी है स्कूल लाइन से, मोनिका जी है, सत्यन विष्णु कुंडू है, और संदीप मक्कड़ है, और दिल्ली से है धर्मवीर जी, और तमाम सुनने वाले श्रोता है, और केशव और नितिन है उनके 2 बेटे, और सभी के साथ ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: जी, धन्यवाद। सुनिएगा आपकी पसंद का ये गीत अपने मित्रों के साथ।
0: जी धन्यवाद,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। हेलो डियर फ्रेंड, हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
2: जी? आवाज कहाँ आ रही है?
1: हेलो जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है?
2: हाँ, आ रही है आवाज।
1: हाँ जी जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
2: जी? दीदी, मैं

0: राम नरेला दामोदर, भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू कुछ।
1: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइएगा, आपके प्रदेश का क्या हाल है?
0: जी दीदी, मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज 43-43 गर्मी पड़ रही है।
1: अच्छा, गर्मी का मौसम। हाँ जी जी सब। हाँ जी, संपर्क में व्यवधान आ रहा है, तो बता दीजिएगा आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी दीदी, वो सुनवा दीजिए। बोल रहा था, बोल, तूने क्या किया?
1: अच्छा, तो जी सुनिएगा आपकी पसंद का ये गीत।
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी मैम
0: जी, नमस्कार। कौन कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेडो से बोलती है।
0: हेडो से जी। पाकिजा जी, हमारे साथ
1: जी
0: कार्यक्रम में
1: पाकिजा
0: जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बताइए कि आप करती क्या हैं?
1: हम घर पर रहती है।
0: घर पे रहते हैं। अच्छा, फिलहाल अभी बरसात शुरू हो गई है तो थोड़ा सा काम बढ़ गया होगा।
1: जी मैडम।
0: हाँ जी, तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए जल्दी से बता दीजिएगा हमारे कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी।
1: मोहब्बत की बरसात देने दो, सावन आने दो।
0: अच्छा, तो सुनिएगा आपकी पसंद का ये गीत।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण श्रोताओं उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर बाद के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम

स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम यूं ही गाते रहो में। श्रोताओं, सफ़र भी खूबसूरत होता है जब दिल में उम्मीद हो। या पहला गीत उन लोगों के नाम जो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं।

ज़िंदगी भी एक लंबा सफ़र है और हम सब उसके मुसाफिर है, तो हर वह दिल जो नई राह की तलाश में रहता है। वह ढूंढता है एक नई राह, नई डगर और एक नई

श्रोताओं, जिंदगी की खूबसूरती देखना है तो कभी सफर पर निकला करें, गीतों का कारबा भी साथ लेते चले। पुराने गीतों की बात ही अलग होती है। यह गीत हमें सिखाता है कि हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए।

क्या खूब सफ़र है दोस्तों इस ज़िंदगी का, रोज़ वही सुबह वही शाम, फिर भी हर रोज़ सवेरा हमें नया लगता है।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी के साथ उम्मीद है ये गीत आपकी राहों को और भी खूबसूरत बना गए होंगे। फिर मिलेंगे नए गीतों और नई यादों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजे हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।
1: तो ये रहा आज का हेलो सहेली प्रोग्राम। सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह हैं 400-24662 यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288 2867-0288 और मुंबई का STD कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिले हमसे जुड़ने का। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन लग नहीं पाते। तो सखियों, हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है समृद्धि नाइक, संपादन योगिता जाधव का, हेलो सहेली की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे, पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गई, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है, सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता

हस्तीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्या आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था।

काश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका। सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो, हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है, चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं।

ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में

नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है। वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संझा की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्तु।

थे। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का। मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब

अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

मिट्टी की सुगंध, फसलों की लहलहाहट और आपकी मेहनत को समर्पित कृषि जगत के इस विशेष अंक में मैं रागिनी आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। किसान साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत एक

0: मूल विचार से होती है। तो किसान साथियों, आइए सुनवाते हैं ये सुविचार। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। किसान भाइयों, आप समझ ही गए होंगे कि कर्म का सही होना कितना महत्व रखता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करता है वही सच्चे अर्थों में कर्म योगी होता है। किसान साथियों, इस विचार के बाद आइए अब सुन लेते हैं आज का प्रश्न। डेयरी पशुओं को अच्छे उत्पादन के लिए कितना सूखा दाना दिया जाना चाहिए? किसान साथियों, प्रश्न फिर एक बार। डेयरी पशुओं को अच्छे उत्पादन के लिए कितना सूखा दाना दिया जाना चाहिए? किसान भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर हम कार्यक्रम के अंत से पहले देंगे, थोड़ा इंतजार करें।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर अब तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। यह विषय मुख्य रूप से इस बात पर जोर देता है कि समाज में बढ़ती हुई आर्थिक और सामाजिक असमानताएं पारिवारिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है और बच्चों के भविष्य व विकास पर क्या असर पड़ता है। साथियों, आइए सुनते हैं इसी संदर्भ पर एक चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार असमानताएं और बाल कल्याण। हर साल 15 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज हमें याद दिलाता है कि परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। वर्ष 2026 में यह दिवस परिवार असमानताएं और बाल कल्याण, फैमिलीज इक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग के विषय पर केंद्रित है, जो आज के समय की एक अत्यंत प्रासंगिक चुनौती है। आज की दुनिया में आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल पहुंच में व्यापक असमानताएं मौजूद है। ये असमानताएं केवल आर्थिक ही नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर पारिवारिक जीवन और बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रही है। असुविधाजनक और वंचित परिवारों में बच्चों को विकास के समान अवसर नहीं मिल पाते, जो उनके जीवन की राह को नकारात्मक रूप से आकार देते हैं। परिवार ही बच्चों के लिए सुरक्षा और पोषण का पहला स्थान है। जब परिवार गरीबी या सामाजिक असमानता के दबाव में होते हैं, तो सबसे बड़ा असर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण पर पड़ता है। 2026 की थीम इस बात पर जोर देती है कि डिजिटल युग में जो बच्चे तकनीकी साधनों से वंचित रह जाते हैं, वे शिक्षा और ज्ञान के मामले में और पीछे छूट रहे हैं। परिवार को मजबूत करने और बच्चों के कल्याण के लिए उचित कार्यवाही की आवश्यकता है। परिवारों को मजबूत करने और बच्चों के कल्याण के लिए उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। हमें ऐसे सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देना होगा जो बाल भत्ते, माता पिता की छुट्टी और सस्ती बाल देखभाल प्रदान करे। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्येक परिवार को, चाहे वे किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, समान अवसर और आवश्यक सुविधाएं मिले। यह विषय मुख्य रूप से इस बात पर जोर देता है कि समाज में बढ़ती हुई आर्थिक और सामाजिक असमानताएं पारिवारिक असमानताएं पारिवारिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है और बच्चों के भविष्य व विकास पर क्या असर पड़ता है। बच्चों का कल्याण, पोषण, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा। आज दुनिया में हर परिवार एक जैसा नहीं है। कई वंचित परिवार ऐसे हैं जिनके पास आय, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य

0: सेवाएं और यहाँ तक कि इंटरनेट जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं है। जब एक परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ जाता है तो उसका सीधा असर उस घर के बच्चों के भविष्य पर पड़ता है। इस दिवस का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ अपने परिवार के साथ खुशियां मनाना नहीं है, बल्कि समाज के उन कमजोर परिवारों के प्रति संवेदनशील बनना है जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। आज के समय में परिवार के सामने सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। आज एक ही सोफे पर बैठे चार लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त, हम दुनिया भर से जुड़े हैं लेकिन अपने बगल में बैठे माता पिता या भाई बहन से दूर हो गए हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से बनता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 हमें यह याद दिलाता है कि एक सुखी और मजबूत परिवार ही एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य की नींव है। असमानताओं को कम करके और परिवारों को सहयोग देकर हम बच्चों की भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं। परिवार केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि इंसान की सबसे पहली सुरक्षा और ताकत है। इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक संकल्प लें, अपने परिवार के बुजुर्गों और बच्चों को समय दें। घर के भीतर मोबाइल और स्क्रीन का समय कम करके आपसी बातचीत बढ़ाएं। समाज के कमजोर और वंचित परिवारों की भलाई के लिए जो संभव हो वह योगदान दे। याद रखें, मजबूत परिवारों से ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है।
1: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे चर्चा, विषय था पारिवारिक असमानताएं और बच्चों का कल्याण। किसान साथियों, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

किसान साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद अब हम कार्यक्रम के अंत की ओर हैं। हमने प्रश्न पूछा था कि डेयरी पशुओं को अच्छे उत्पादन के लिए कितना सूखा दाना दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है, डेयरी पशुओं को उनके शारीरिक वजन के 2.5 से 3% तक सूखा दाना प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एक गाय का शारीरिक भार 300 किलोग्राम है तो उसे 7.5 से 9 किलोग्राम तक दाना प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों इस बात की जानकारी थी। यदि नहीं तो इस प्रश्नोत्तर के माध्यम इस बात की जानकारी आपने हासिल कर ली होगी।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और अब रागिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार तरंगणी।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगणी।

इस अंक में सांसद की मांग, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन, सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन और छात्रों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा।

द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने उपराज्यपाल से द्वीपों में प्रस्तावित मानित विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मॉडल के बजाय संसद के अधिनियम के माध्यम से पूर्ण केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया है। सांसद ने

7 मई को उपराज्यपाल को दिए विस्तृत ज्ञापन में बताया कि वह इस मुद्दे को पहले भी पिछले वर्ष 9 दिसंबर तथा इस वर्ष 12 फरवरी को प्रधानमंत्री के समक्ष उठा चुके हैं। फरवरी में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर द्वीपवासियों की मांग से अवगत कराया था। सांसद ने बताया कि कॉलेजों के दौरे के दौरान छात्रों और शिक्षकों ने एकमत से केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग की है। उन्होंने आशा जताई कि प्रशासन छात्रों और द्वीपवासियों के शिक्षा हित में इस मांग का समर्थन करेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने पिछले दिनों विम्बलीगंज डिवीजन तथा नगरपालिका क्षेत्रों में विभिन्न सड़क सुधार एवं मरम्मत कार्यों की आधारशिला रखी। यह कार्यक्रम होपटाउन, शोर पॉइंट, बम्बू फ्लैट, टापू बस्ती, कन्यापुरम, विम्बलीगंज, शोलबे, राइट मियो और मनारघाट सहित कुल 19 स्थानों पर आयोजित किया गया। सांसद द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों के अंतर्गत हेडो, दिलानीपुर, प्रेमनगर, डेरी फॉर्म, स्कूल लाइन, डॉलीगंज और पुराने पहाड़गांव सहित 9 स्थानों पर लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत, नवीनीकरण और सुधार कार्यों की आधारशिला रखी। इन योजनाओं से क्षेत्रीय सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने तथा आवागमन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती के उपलक्ष्य में कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से हाल ही में अंडमान क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक और कलात्मक योगदान को सम्मानित करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विभाग के निदेशक प्रियंका कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि रविन्द्र जयंती नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, लेखक और दार्शनिक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, जिनके कार्यों ने बंगाली साहित्य, संगीत और भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में टैगोर के योगदान और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने युवा पीढ़ी से टैगोर के कार्यों से प्रेरणा लेने का भी आग्रह किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सागर कवच SKV नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कल सुबह 6 बजे से आज शाम 6 बजे तक किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री मार्ग से घुसपैठ तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर संभावित हमलों का तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण करना था। अभ्यास के दौरान विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और बल ने संयुक्त रूप से भाग लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं, समन्वय क्षमता तथा त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली का मूल्यांकन किया। आपदा प्रबंधन निदेशालय ने समुद्री एवं जिला प्रशासन के समन्वय से सभी नौका संचालकों और बोट मास्टर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि सभी नौकाएं समुद्र यात्रा के योग्य हों, उनका नियमित रखरखाव किया जाए तथा निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को न बैठाया जाए। आपदा प्रबंधन के निदेशक ने नौका संचालन के दौरान दिशा निर्देशों के पालन के निर्देश दिए। प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से सुरक्षा को साझा जिम्मेदारी मानते हुए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार विभागों में आपदा पूर्वाभ्यास आयोजित कर तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में जहाजरानी सेवा निदेशालय ने हाल ही में श्री विजयपुरम स्थित मरीन डॉकयार्ड में सुनामी आपदा पूर्वाभ्यास का आयोजन किया। यह अभ्यास DSM के नोडल अधिकारी आपदा प्रबंधन की निगरानी में सम्पन्न हुआ, जिसमें मरीन डॉकयार्ड के सभी कर्मचारियों तथा परिसर में कार्यरत विक्रेताओं ने सक्रिय भागीदारी की। आपदा पूर्वाभ्यास के दौरान कुल 642 लोगों को सुरक्षित रूप से निर्धारित शेल्टर पॉइंट तक पहुंचाया गया। अंडमान निकोबार पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारियों के लिए पिछले दिनों राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान श्री विजयपुरम में नेट ग्रिड सॉल्यूशन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेट ग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हृदेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर अंडमान निकोबार पुलिस की अपर पुलिस महानिदेशक सिंधु पिल्ले, पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर ए कोन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में खुफिया समन्वय एवं तकनीक आधारित जांच प्रणालियों की भूमिका पर बल दिया। वंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों की सहायता के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं के उन छात्रों को निशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कोचिंग फीस देने में असमर्थ हैं। इस योजना में निम्न आय वर्ग के छात्रों, अनाथालय में रहने वाले बच्चों, एकल अभिभावक परिवारों तथा अन्य सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक डिजिटल कौशल प्रशिक्षण भी शुरू करने की योजना है। इच्छुक छात्र आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ 20 जून तक हेडो स्थित गैर सरकारी संगठन उन्नति के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में CBSE द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं का परिणाम हाल ही में घोषित किया गया। CBSE वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार द्वीप समूह के सभी विद्यालयों से कुल 4,948 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 4,012 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए जबकि 524 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 81.08% दर्ज किया गया। इसके साथ ही द्वीप समूह के 10 विद्यालयों ने इस परीक्षा में 100% परिणाम हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अनिम्स के सामुदायिक चिकित्सा विभाग एवं मनोरोग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 के गुणात्मक सर्वेक्षण चरण की हाल ही में शुरुआत की गई। द्वीप समूह में पहली बार यह सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्षय रोग के मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक तनाव, सामाजिक कठिनाइयों तथा उपचार यात्रा के दौरान एवं बाद की स्थितियों को समझना है। यह सर्वे टीबी मरीजों की सामाजिक तथा उपचार संबंधी कठिनाइयों का भी अध्ययन करेगा। इसके निष्कर्षों से क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने में मदद मिलने की उम्मीद है। अध्ययन के तहत 3 श्रेणियों के टीबी मरीजों से गहन साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रतिभागी के अनुभव को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें उच्च प्रोटीन युक्त पोषण भी प्रदान किया जा रहा है। यह पहल भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन मिशन और टीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। फरारगंज में 14 मई को दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु समेकित क्षेत्रीय केंद्र तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के संयुक्त तत्वावधान में अभ्योदय कॉम्प्लेक्स में वृद्धजन एवं दिव्यांगजन के लिए सहायक उपकरणों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र की पहल के अंतर्गत तथा सामाजिक कल्याण निदेशालय के सहयोग से सम्पन्न हुआ। शिविर में कुल 54 लाभार्थियों की जांच की गई। CRC की बहु विषयक विशेषज्ञ टीम ने प्रत्येक लाभार्थी की कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर विस्तृत आकलन किया। कार्यक्रम के दौरान निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध पुनर्वास सेवाओं पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। जिला कारागार प्रातरापुर में पिछले दिनों नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना द्वारा IRCA कारागार विभाग तथा UDID योजना के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा पुनर्वास, सुधार और समाज में पुनर्स्थापन के महत्व को समझाना था। नोडल अधिकारी एवं जिला कारागार के जेलर ने बंदियों को सकारात्मक एवं अनुशासित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई को टैगोर राजकीय शिक्षण संस्थान के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। माई भारत के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 125 युवाओं, छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय संचार निगम लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक प्रकाश खुले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने 1998 में डॉ APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किए गए सफल पोखरण परमाणु परीक्षणों के

महत्व पर प्रकाश डाला, जिसने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने दूरसंचार प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर जागरूकता और युवाओं के बीच प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग के विकास पर भी विस्तार से चर्चा की। संस्थान की प्रधानाचार्य डॉ. मंजू लता राव ने छात्रों को शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास के लिए नवाचार, वैज्ञानिक सोच और डिजिटल शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में स्थानीय कार्यों से वैश्विक स्तर पर प्रभाव उत्पन्न करना विषय पर शिल्प निर्माण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और व्यक्तिगत योगदान के महत्व को बताना है। प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण में कमी तथा स्थानीय वनस्पतियों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया जाएगा, जिससे वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण को मजबूती मिल सके। प्रतियोगिता में छात्र, शिक्षक, शोधार्थी और वैज्ञानिक भाग ले सकेंगे। यह कार्यक्रम 19 और 20 मई को श्री विजयपुरम स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में आयोजित किया जाएगा। मत्स्य विभाग की ओर से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग कोची के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिलों के मत्स्य सहकारी समितियों के 6 नामित प्रतिनिधियों व मछुआरों के लिए कल तक कोची और उडुपी की एक सप्ताह की अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया है। इन नामित प्रशिक्षुओं में मत्स्य सहकारी संघ, दक्षिण व मध्योत्तर अंडमान के जिला मत्स्य सहकारी संघ के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के आवेदक और जंगलीघाट स्थित मत्स्य लैंडिंग केंद्र से लॉन्ग लाइन फिशिंग कार्यों में लगे मशीनीकृत मछली पकड़ने वाले जहाजों के मालिक शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य सतत टूना मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आय बढ़ाना और निर्यात के लिए एक एकीकृत मूल्य श्रृंखला स्थापित करना है। इस अध्ययन यात्रा से मत्स्य क्षेत्र में उद्यमिता को मजबूती और द्वीपों में रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही समाचार तरंगिणी का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार तरंगिणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका ज्योति लकड़ा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 8वीं कड़ी।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। इंटरनेट 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज न इसके साथ महान अवसर लाए। इसके बाद मानव जाति में बहुत सारे बदलाव हुए। इंटरनेट के बारे में बात करते हुए और अब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ पेश किया गया है। किसी के साथ संपर्क में रहना अब मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया प्रावधान जैसे स्टेटस अपडेट हमें पूरे शब्दों को एक महत्वपूर्ण विषय या दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में व्यक्त करने की अनुमति देती है। कनेक्शन केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर के अधिक लोगों से संपर्क करना और

अपने के लिए भी बहुत आसान है। इंटरनेट मानव जाति के लिए वरदान रहा है, लेकिन विज्ञान द्वारा हमें दिए गए हर दूसरे आविष्कार के रूप में इसमें कभी ड्रॉबैक्स का भी हिस्सा है। कुछ भी ज्यादा होना अच्छा नहीं है, हालांकि ये फायदेमंद हो सकता है। यही सोशल मीडिया साइट्स के साथ समस्या है। इसने दुनिया को एक छोटी सी जगह बना दी, जिससे दूरी के बावजूद लोगों के बीच बेहतर संचार यानी कम्युनिकेशन हुआ। यह हमें अन्य संस्कृतियों के करीब लाया, हमने उनके बारे में सीखना शुरू किया, लेकिन इसने एक नई समस्या को जन्म दिया जो सोशल मीडिया के लिए एक लत है। सोशल मीडिया के आदि होने वाले लोगों के पीछे मुख्य कारण जटिल है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की जीवन शैली पर निर्भर करता है। हर बार जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो महसूस करने वाले अच्छे रसायन निकलते हैं, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। ये हमें स्वीकृति की भावना देती है, क्योंकि ऐसे लोग इसे विशेष क्षण पर्टिकुलर मोमेंट की खुशी या इस पर निर्भर करते हैं कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। वो जो आत्मविश्वास नहीं रखता है या लगातार दूसरों के बारे में सोचता है कि और उसके बारे में क्या सोचता है, ऐसे लोग सोशल मीडिया से ज्यादा एडिक्ट होते हैं कि सोशल मीडिया उन्हें किसी के सामने बात किए बिना बोलने या व्यक्त करने का मौका देता है। सोशल मीडिया लत आजकल एक लोकप्रिय और अनूठी घटना है, लेकिन कुछ सामान्य लक्षणों का निदान किया जा सकता है जो मैं अब लम्हे प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर सोशल मीडिया का अनुभव करते समय उत्साहित महसूस करना, उस भावना में इतनी गड़बड़ी यानी एंग्रोस्ड होने के कारण व्यक्ति उस समय चेतना कॉन्शियस को खो देता है। सोशल मीडिया लत के कुछ शारीरिक लक्षण है दोस्तों, धुंधली दृष्टि यानी ब्लर्ड विजन है, उचित नींद नहीं लेना और सिर दर्द का अनुभव। सोशल मीडिया से कनेक्ट होने या पहुंचने योग्य नहीं होने पर चिंतित महसूस करना। प्रतिदिन गतिविधि के बारे में अपडेट करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता, इसे कंपल्सिव नीड कहते हैं। ऐसे लोग जब भी लोगों के समूह के साथ होते हैं तो भी अकेले रहना पसंद करते हैं। बलपूर्वक सोशल मीडिया से कटौती करते समय क्रोध करना। आजकल समस्याएं बहुत खराब हो रही है, क्योंकि किशोरावस्था में यानी टीनेजर्स सोशल मीडिया के लिए अधिक से अधिक आदि हो रहे हैं, क्योंकि ये आसानी से सुलभ हो गया है। इस लत का निदान करना और उसका इलाज करना सबसे अच्छा तरीका साइकियाट्रिस्ट से परामर्श करना होगा, और कुछ सेशंस व्यक्ति को व्यसन से निपटने में मदद करेगा। ये व्यक्ति के व्यवहार को काफी हद तक बदल देते हैं और अचानक पहुंच को रोकने से महत्वपूर्ण वापसी यानी क्रिटिकल विथड्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। सोशल मीडिया लत के लिए उपचार अल्कोहल के एडिक्शन समान ही बनाए गए हैं। इसमें भी विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और बहुत खतरनाक है। द पर्सन हैज टू अंडरगो लॉट ऑफ ट्रॉमा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, इसीलिए इससे बचना बेहद जरूरी है। लक्षण बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया की लत एक व्यक्ति के व्यवहार को बाधित कर सकते हैं। तो यह बेहतर है अगर हम इसे रोक सकते हैं और केवल हमारे जीवन के मूल में वृद्धि कर सकते हैं। इसे रोकने के कुछ तरीके में सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय होगा। कुछ हॉबीज डेवलप कीजिए, जो आपके खाली समय में पढ़ना, गार्डनिंग करना, पहेलियों का सुलझाना आदि में व्यस्त रखें। आप उस समय अपने दोस्तों से बात करना और कुछ नया सीखने में भी व्यतीत कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने खाली समय में परियोजनाएं बनाना पसंद करते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कुछ कविताएं, गीत भी लिखते हैं। मैं सलाह देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ करें जो आपके बोरियत को दूर करे और आपको सोशल मीडिया तक अट्रैक्ट न करे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039।

0: हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। हाल ही में किए गए अध्ययन से ये सुझाव दिया गया है कि उनमें से हृदय गति यानी इंक्रीज्ड हार्ट रेट या असामान्य रक्तचाप यानी इंक्रीज्ड और अबनॉर्मल ब्लड प्रेशर का अनुभव हो सकता है। इस विशिष्ट लत में वापसी के लक्षण यानी विथड्रॉल सिम्टम्स आमतौर पर गैर जीवन खतरनाक यानी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और नशे की लत चिंता स्तर एंग्जाइटी लेवल में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, हार्मोन लेवल में असंतुलन की ओर ले जाती है। जबकि अंतिम लक्षण एक कम प्रतिरक्षक प्रणाली यानी डिमिनिशिंग इम्यूनिटी सिस्टम है, कुछ सामान्य रूप से मनाए गए लक्षण है। आसानी से परेशान होना, अकेला रहना, उदास, बेचैनी महसूस होना, समूह गतिविधियों यानी ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा या भाग नहीं लेना। डियर फ्रेंड्स, पता चला होगा कि कितना खतरनाक है ये सोशल मीडिया एडिक्शन। स्मोकिंग अल्कोहल जितना खतरनाक हो सकती है, सोशल मीडिया भी उतना ही खतरनाक है और कभी कभी उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया तो आज हमारे घर में, हमारे परिवार में, आज हमारे बच्चों के हाथ में है। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। With this very useful and thought-provoking information about social media addiction, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। I repeat, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की आठवीं कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के इस सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर चर्चा, साथ ही फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद ले सकेंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेश आते हैं आप सुनेंगे रात्रि 10:00। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट तथा रात 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10:00 विविध

सती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया की। ये तो थे आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्री टिप्स में जानेंगे कटहल की खेती के बारे में 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा रोशनी शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरितमानस गान का समय रहेगा। मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 6:50। सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएँ। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी आप सुनेंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भोले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर प्राइमरी चैनल और विविध FM 100.9 MHz पर हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय रहेगा, नियंत्रित रक्तचाप सेहत की मजबूत ढाल। चिकित्सक विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिव कुमार सिंह। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर कलाकार होंगे हबीब वली मोहम्मद और रानू मुखर्जी। सुबह 9:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर आप एस गणेशन का कर्नाटक शैली में क्लैरिनेट वादन सुनेंगे। सुबह 10:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश, 11:00 गीत गुंजन, 11:30 पर गीत अतीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। तेलुगु कार्यक्रम में दोपहर 12:00 शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा और फिल्मी गीत सुनेंगे। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम में के रामाचंद्रन की लिखी वार्ता होगी आकाशवाणी के 90 वर्ष, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रोशनी दिवस पर चर्चा और फिल्मी गीत सुनाया जाएगा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में नीना मेहता और शारदा को आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। 1:30 पर आपके नाम फिल्मी पैगाम का आप आनंद ले पाएंगे। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक तथा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुनेंगे 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा विश्व स्मारक और स्थल दिवस पर चर्चा और लोकप्रिय गीत सुनवाया जाएगा। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा लम्हे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में युद्ध कार्यक्रम होगा। बंगला कार्यक्रम में फिल्मी गीत सुनेंगे 5:30 पर। संध्या 6:00 किसान वाणी कार्यक्रम में पशुपालन व नारियल सुपारी के बागान आय के अच्छे स्रोत विषय पर नमूना घर के श्री देवन से की गई बातचीत आप सुनेंगे। आमने सामने कार्यक्रम 6:30 पर। 6:45 पर सिया राज अनवर की लिखी झलकी आप सुनेंगे 7वें आसमान की सैर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा द्वीप हमारा गौरव और अंतर्राष्ट्रीय रोशनी दिवस पर चर्चा। चित्रपट संगीत का आनंद ले पाएंगे रात्रि 8:00। 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान प्रसारित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती तथा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप केवल कुमार गंधर्व का गायन सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, लेकिन रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज की सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:00 हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, कल सुबह 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम आप सुनेंगे देश रागनी। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

7:30 पर हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय रहेगा नियंत्रित रक्तचाप सेहत की मजबूत ढाल। चिकित्सक विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर शिव कुमार सिंह।

फिल्मी गीतों की शौकीन श्रोताओं के लिए सुबह 10 बजे कशिश, 11 बजे गीत गुंजन और 11:30 पर गीत अतीत कार्यक्रम होगा।

हमारे गीतों और गजलों से सजा कार्यक्रम के शौकीन श्रोताओं के लिए सुबह 8:30 पर और दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुने जा सकेंगे। ये तो थे कल के कुछ शेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। अबू धाबी में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने श्री मोदी का भव्य स्वागत किया। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों पर राजधानी श्री विजयपुरम केंद्र द्वारा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण सभागार में पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत से सराबोर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की और पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का समापन हुआ।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार प्रमुख मुद्दे रहे। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व द्वारा दिखाए गए लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। प्रसार भारती के लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में आज निकोबारी लोक संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति, परंपरा और संगीत को समर्पित यह विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 6 बजे से भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण सभागार में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में निकोबारी लोक संस्कृति और पारंपरिक संगीत की झलक प्रस्तुत की जा रही है। आयोजन में कला एवं संस्कृति निदेशालय की निदेशक प्रियंका कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, जबकि टैगोर कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ. मंजुलता राव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आम नागरिकों, संगीत प्रेमियों और सांस्कृतिक जगत से जुड़े लोग भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी के अनुसार यह कार्यक्रम निकोबारी लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम के उप महानिदेशक सी सुब्बाराव सहित केंद्र के सभी अधिकारी उपस्थित हैं। कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी संवाददाता ने लाइव कार्यक्रम में चल रहे निकोबारी लोकगीत की एक झलक साझा की।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है, नीट परीक्षा और ग्रीन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी FM रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी और CBI इस मामले की जांच कर रही है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा

0: मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक, CBSE के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग द्वारा आज ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों का समापन समारोह संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग श्री विजयपुरम केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संजय कुमार सिन्हा ने प्रतिभागियों को जूनियर पैरा टैक्सोनॉमिस्ट तथा नेचर कंजर्वेटर कम इको टूरिज्म गाइड पाठ्यक्रमों के प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता प्रबंधन और सतत पर्यटन से जोड़ना था। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और द्वीपों की अद्वितीय जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इको टूरिज्म गाइड के रूप में प्रशिक्षित प्रतिभागी पर्यटकों को प्रकृति के महत्व से अवगत कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा 18 मई को राजधानी श्री विजयपुरम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संग्रहालय आम जनता के लिए खुला रहेगा। इस वर्ष की वैश्विक थीम म्यूजियम यूनाइटिंग ए डिवाइडिंग वर्ल्ड रखी गई है, जो संग्रहालयों की संवाद, समावेशिता, सांस्कृतिक सद्भाव और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ बढ़ाने में भूमिका के महत्व को बताती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जोनल संग्रहालय जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, जीवन शैली और प्रकृति के साथ उनके सामंजस्यपूर्ण संबंधों को प्रदर्शित करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। संग्रहालय पर्यटकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को द्वीपों की जनजातीय संस्कृति को निकट से समझने का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम के तहत सुबह 11:30 बजे से विशेष गाइडेड टूर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संग्रहालय के अधिकारी और विशेषज्ञ विभिन्न प्रदर्शनों की जानकारी देते हुए द्वीपों की जनजातीय संस्कृति और मानव विज्ञान संबंधी महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इस अवसर पर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के मानव विज्ञानी सातिकी पाल ने कहा,
1: इस वर्ष की थीम म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड हमें ये संदेश देता है कि संग्रहालय केवल अतीत के अवशेषों का संरक्षण स्थल नहीं, बल्कि समाजों, संस्कृतियों और समुदायों को जोड़ने वाली जीवंत संवाद केंद्र है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का मानव विज्ञान संग्रहालय यहाँ की जनजातियों का विरासत, सांस्कृतिक विविधता और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली को समझने का एक माध्यम है। ये संग्रहालय पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों के बीच पारस्परिक समझ और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को सुदृढ़ करता है। इस अवसर पर प्रातः 11:30 बजे से विशेष निर्देशित संग्रहालय भ्रमण का आयोजन किया जाएगा। आप सभी से सादर अनुरोध है कि अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को सफल एवं स्मरणीय बनाएं।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। अबू धाबी में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने श्री मोदी का भव्य स्वागत किया। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों पर राजधानी श्री विजयपुरम केंद्र द्वारा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण सभागार में पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत से सारोबोर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। NTA ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। और पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का समापन हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:16 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी। जलयानों का यात्रा कार्य

कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को मंगलवार 19 तारीख तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। जन सेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेगी, साथ ही गरज के साथ 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होगी। ये थी मौसम की जानकारी।

लीजिए अब सुनिए जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। एमवी भारत सीमा कल शाम 6:30 पर मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 17 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। लिटिल अंडमान जाने के लिए जलयान सिंधु 17 तारीख को सुबह 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर 16 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 17 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट 27 तारीख को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा कचाल नैनकौरी माकाचूहा और अरफा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 30 तारीख को रात 8:30 पर कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। जलयान सिंधु ननकौरी और कचाल होते हुए कैमल बे जाने के लिए 19 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और 21 तारीख को सुबह 6 बजे कैमल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुँचेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम आएगा। एमवी रानी चंगा कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका कल दिन में 11:30 पर स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी हटबे कल सुबह 7 बजे शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्टेट आइलैंड कदम तल्ला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान 17 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटन कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही शाम 4:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप जाने के लिए कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 17 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। जन सूचनाएं इसके अंतर्गत सुनिए एक सूचना। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैर कानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 0319224012703192238881 या 10

साथ सुनिए। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। पहले सुनवाते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में समीर की गीत रचना। संगीत नदीम श्रवण का है तथा फिल्म का नाम है कल की आवाज़।

याद किया। सुनवाते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में समीर की गीत रचना। संगीत नदीम श्रवण का है तथा फिल्म का नाम है कल की आवाज़।

लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म ये मोहब्बत है का ये गाना। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आनंद राज आनंद ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, जिनकी नज़र आसमान पर हो उन्हें रास्ता खुद बनाना है। दोस्तों, यदि आपके लक्ष्य साधारण हो तो आप बने बनाए रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन अगर आप इतिहास रचना चाहते हैं या कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो पहले किसी ने ना किया, तो आपको अपनी राह खुद तलाशनी और बनानी होगी। दोस्तों, परिवार का प्यार और उनका साथ जीवन की वह मखमली छांव है जो कड़ी धूप में भी हमें शीतलता प्रदान करती है। सृष्टि में मनुष्य के लिए परिवार से बढ़कर कोई दूसरा उपहार नहीं है। परिवार केवल रक्त संबंधों का एक समूह मात्र नहीं, बल्कि यह प्रेम, विश्वास, संस्कारों की वह पाठशाला है जहां एक व्यक्ति का व्यक्तित्व गढ़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवार ही वह आधारशिला है जिस पर एक सुखी जीवन की इमारत खड़ी होती है। परिवार हमारे जीवन का वह सुरक्षा कवच है जो हमें बाहरी दुनिया की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है।

लगता है। जब हम थक कर चूर हो जाते हैं या जीवन के उतार चढ़ाव से निराश होते हैं, तब परिवार के सदस्यों का साथ और उनकी एक मुस्कान हमारी सारी थकान मिटा देती है। एक स्वस्थ परिवार में साझा की गई खुशियाँ दुगनी हो जाती है और बांटा गया दुख आधा हो जाता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 15 मई यानी आज के दिन को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस दिन की घोषणा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में परिवारों के महत्व को रेखांकित करना और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना है। परिवार को समाज का प्राथमिक इकाई माना जाता है। यह व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास उसके परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है। परिवार वह पाठशाला है जहां हमें प्रेम, त्याग, सहिष्णुता और एकता जैसे मानवीय गुणों को सिखाते हैं। चाहे वह बचपन की सुरक्षा हो या बुढ़ापे का सहारा, परिवार हर मोड़ पर हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। दोस्तों, आज के दौर में बढ़ते शहरीकरण और भगदौड़ भरी जीवन शैली के कारण संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। लोग एक ही घर में रहते हुए भी डिजिटल दुनिया में खोए रहते हैं, जिससे आपसी संवाद और संवेदनाएं कम हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें यह अवसर देता है कि हम रुके और अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताए। एक मजबूत परिवार ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। इस दिवस का असली संदेश यही है कि हम अपने मतभेदों को भूलकर एक दूसरे का सामना करें और परिवार रूपी इस अनमोल धरोहर को संजोकर रखें। जैसा कि कहा जाता है, परिवार ही वह एकमात्र स्थान है जहां हमारी कमियों के बावजूद हमें स्वीकारा जाता है, और जब हम परिवार के साथ होते हैं तो बड़े से बड़ा दुख भी छोटा लगने लगता है।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज शुक्रवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप भी हमसे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें गुरुवार शाम 4 बजे से 4:30 पर इन नंबरों पर 2323623255585। हमारा स्टडी कोड है 0392। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो फ्रेंड।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं धीरज जबारी बात कर रहा हूँ, गुजरात से।
0: जी नमस्कार धीरज जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं और आकाशवाणी विजयपुरम परिवार और आप भी अच्छे हो गए।
0: जी हम सब बिल्कुल ही ठीक है। तो बताइए आज की शाम कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज गाना सुनना है अंधा कानून फिल्म का।
0: जी
1: रोते रोते हंसना सीखो, किशोर कुमार की आवाज।
0: जी जी, बहुत ही प्यारा गीत है। तो धीरज जी, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है, तो आपके हिसाब से परिवार का साथ होना कितना जरूरी है और परिवार हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है?
1: मैं तो संयुक्त परिवार को बहुत सुदृढ़ मानता हूँ।
0: जी
1: जो संयुक्त परिवार में जो काम होते हैं वो विभक्त परिवार यानी अलग रहने से नहीं होता है। और एक संयुक्त परिवार है तो मान लो कि सारा दिन एक ही है, मेरा यही मानना है। और कई ऐसे कार्य है कि जो संयुक्त परिवार में होते हैं और ये जो परिवार दिवस उजवाया जाता है तो उसकी भावना एक ही है कि सब हिल मिल के साथ में रहो और कोई मन मोटाव मत रखो। अपने मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
0: जी आपने बिल्कुल ही सही कहा, संयुक्त परिवार में हम अपनी खुशियां और दुखों को बांट सकते हैं।
1: बिल्कुल अच्छी आपने बात कही, सही है। और देखा जाए तो हमने एक कहावत भी सुनी है कि एक लकड़ी आप तोड़ सकते हो लेकिन लकड़ी की पूरी भारी है वो कोई नहीं तोड़ सकता।
0: कोई नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल भी आपने सही कहा।
1: और मुझे युवाणी कार्यक्रम बहुत पसंद है, मैं बहुत समय से सुन रहा हूँ और मुझे कई बार फोन भी लगे और आप सभी लोगों की प्रस्तुति यानी सर्वोत्तम होती है।
0: जी जी, हमें खुशी होती है कि आप सब अपना कीमती समय निकाल कर हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमें ढेर सारा प्यार देते हैं और आगे भी ऐसे ही सुनते रहिए। जी चलिए धीरज जी, आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो, नमस्ते मैडम। मैं आसाम तिरहुत डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मेरा शुभ नाम प्रेमजीत चक्रवर्ती।
0: जी प्रेमजीत जी, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
0: जी हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है। तो बताइए, आज की शाम कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है ये दिल हाशी करना, फिल्म का नाम है और गाने का बोल ऐसे है, उठा ली जाऊंगा तुझे मैं डोली।
0: जी बहुत ही प्यारा गीत।
1: सुभाष चंद्र जी और विनोद अग्रवाल जी को आवाज में है ना।
0: जी, तो चलिए प्रेम, हम आपको सुनवाते हैं ये।

0: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, नमस्कार
0: नमस्कार, आपका नाम?
1: जी। मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: जी हारून जी, बताइए कैसे
1: आपने
0: हैं आप?
1: फरमाए हो, हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हैं?
0: हम सब भी बिल्कुल ही ठीक है। तो बताइए हारून जी, आप आज के दिन कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हाँ, फिल्म का नाम है तेरे नाम, ओढ़नी ओढ़ के नाच।
0: जी बहुत ही प्यारा गीत है, तो चलिए आपको आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत आपकी रेडियो सेट पर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानू को इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे है। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं किशोर कुमार के गाए फिल्म शर्मिली के एक गीत के साथ। नीरज के लिखे इस गीत को संगीत दिया है ST बर्मन।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त को फिल्म प्यासा में। संगीत SD बर्मन का है।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे हैं फिल्म जंगली में। हसरत जयपुरी के गीत को संगीत से दिया है शंकर जयकिशन ने।

गीता दत्त और साथियों को सुनते हैं मिस्टर एंड मिसेस 55 में। मजरू के गीत को संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू।

0: Deals. Rush to your nearest Nexo showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
2: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स। TNC अप्लाई।
3: लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म मेरे हमसफर में।

लता मंगेशकर को अभी आप फिल्म आशा में सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल को शुरू में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी आ राजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में हैं। अभ्यर्थियों केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा। बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहन शक्ति परीक्षण PMNET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति पर होगा। लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित या लिखित अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी आर राजपत्रित में सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव ओपन के लिए कुल पद है 28, अनारक्षित वर्ग के लिए 4 पद, 19 पद ओबीसी वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 4 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है और विभिन्न विभागीय के लिए 3 पद है। अनारक्षित वर्ग के लिए 2 पद और 1 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए होगा। फॉलोवर बाबर एग्जीक्यूटिव कुल पद है 1, जो ओबीसी वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर वॉशरमैन एग्जीक्यूटिव के लिए कुल पद है 3, अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पद, ओबीसी वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। ये रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए शैक्षिक आरक्षण लागू होगा। कुल पद

केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। ईडब्ल्यूएस, एमएसपी, ईएसएम, भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-requirement.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन अब 17 मई की से बढ़ाकर 26 मई 2026 के मध्य रात्रि तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-requirement.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का द डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
2: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स। TNC अप्लाई।
3: लीजिए अब सुनिए समेत स्वरों में गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप समित स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी

0: चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्ष

0: वाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्य की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की

0: घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at

0: Current Affairs. Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we will be discussing about the Prime Minister's visit to five nations, strengthening India's global partnerships. The first leg of the visit began in Abu Dhabi, where in a special gesture, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan personally received the Prime Minister upon his arrival, a reflection of the deep and enduring bonds of friendship between India and the UAE. Prime Minister Modi extended gratitude to President Nahyan for the warm reception, describing the UAE as his second home. Listen in.
1: आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां थी उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। मैंने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, यूएई पर हुए हमलों के कारण

0: has also remained on the array of talks that are going to happen in Netherlands.
1: Professor Pant, how important is India's growing and expanding engagement with partners like the Netherlands?
2: Agenda very significant and very important, because one of the things that we are witnessing now is, and of course, juxtaposing it with our discussion earlier with the UAE, if you look at the trajectory of Indian foreign policy in the last decade, two geographies where India has invested most, where India is tied in most, where India is openly embracing a sense of commitment, these two geographies are the Middle East and Europe. And I think the Prime Minister is signaling that as the world goes through a churn of great power competition, contestation, these two critical geographies will remain central for India's developmental priorities, for India's strategic priorities, as well as for India's tech priorities. And I think this is where what is going to happen during this visit. This is going to be about New Delhi's trying to position itself as a credible manufacturing, technology and investment hub as we see a global supply chain reconfiguration. And Europe certainly is very important in that respect. Then, of course, you have the energy transition that we were talking about. We were talking about it in a certain context when it came to UAE. But if you think about Europe, India is attempting to diversify its suppliers, its technology partnerships, its green transition imperatives. So cooperation on renewables, green hydrogen, clean technologies is going to be figuring out a lot when Prime Minister goes from Netherlands all the way to Nordic countries. So I think in that sense, energy, economy, and then tech, India's growing emphasis on emerging tech and innovation ecosystems, semiconductors, AI, resilient supply chains, defense tech, startup collaborations, these are all critical now for India's external partnerships. So now from a traditional focus on political solidarity to a far more transactional and capability-oriented engagement with major economies is what is defining India's European outreach. And I think that is what we are going to see in country after country that Prime Minister goes, whether it is Netherlands, whether then after Sweden, Norway, Italy. I think this is how we are going to see the outcome from that. We should assess the outcome from that perspective, that India is no longer content with symbolic diplomacy. It is seeking tangible gains, whether it's technology access, energy resilience, investment flows, and a strategic influence. And at a time when you have geopolitical fragmentation, India, what it is trying to do is basically leverage its growing economic weight to emerge as a pivotal actor in these two critical geographies where India has traditionally not been that important. But today, certainly, India's economic weight is giving it such a heft that it can have a bilateral partnership with the UAE and it can have a bilateral engagement with the Nordics. So we will have the India-Nordic summit happen next week. So it is, I think, in that sense, a transformative moment in India's ties with both West Asia and Europe.
1: Before we proceed further into the discussion, focusing on the second leg of the Prime Minister's visit, which is to the Netherlands, here's an interview of the Indian Ambassador to the Netherlands, Kumar Tuhin, who described the Prime Minister's visit to the country as a significant one, while speaking exclusively to Akashwani correspondent Sushrut Sharma. Aayye sunte hain iske pramukh ansh.
3: प्रधानमंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर नीदरलैंड आ रहे हैं. इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन सर. सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट?
4: यह यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं. लेकिन यह एक ऐसा मौका होगा जबकि दोनों देशों के नेता नीदरलैंड में नई सरकार बनने के बाद पहली बार सामने सामने मिल रहे होंगे. तो इस मौके पर आज तक जो हमारी प्रगति हुई है उसको रिव्यू करना, हमारी जो प्रोग्रेस है उनको कंसोलिडेट करना और आगे एक नई दिशा देने का एक बहुत बढ़िया मौका है.
3: सर, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पे दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों पे बात करेंगे और उनको और एक्सप्लोर करेंगे?
4: पहले से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, और जो पानी का क्षेत्र है, और कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो पहले से ही बहुत कुछ काम हो रहा है. हम ये आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को मौका मिलेगा कि जो नए इमर्जिंग जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है या क्लीन एनर्जी का क्षेत्र है, मैरिटाइम कोऑपरेशन का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हमारी आज की प्रगति को रिव्यू करना और हमें एक नई दिशा और नए निर्देश देने का एक अवसर.
3: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नीदरलैंड एक पायनियर है, उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे R&D के फील्ड में कुछ आरंभ भी हो रहा है, तो क्या आगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं एक्सप्लोर करते हैं?
4: जी, नीदरलैंड्स विश्व की सबसे प्रख्यात सेमीकंडक्टर कंपनियों की जगह है और पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का काफी बड़ा काम है. तो इसलिए ये कम्प्लीमेंट्री एक तरह के हम लोगों का स्ट्रेंथ है और हमारी भूमिकाएं हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि डच कंपनियां जो कि अभी भारत में मौजूद हैं लेकिन उनकी और

0: कंपनी की अभी आशाएं और पोटेंशियल है, उसको हम लोग एक नए स्तर पर लेके जा रहे हैं।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आजकल बहुत बात हो रही है, नीदरलैंड्स में एक पायनियर है, लेकिन इंडिया भी इसमें एक उभरता हुआ लीडर नजर आ रहा है। सर, उस क्षेत्र में से कौन से फील्ड्स हैं जहां पे ये हमको बहुत बेनिफिट करेगा? हम सुन रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक रोल है अदर देन एनर्जी सिक्योरिटी।
0: जी, सो नीदरलैंड्स क्लाइमेट के एरिया में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के इलाके में काफी बढ़िया करते हैं। हमारे देश में भी आपको पता है कि क्लाइमेट, वातावरण और साथ साथ कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डच कंपनियों के पास जो उनकी जो तकनीक है, उनके पास जो आधुनिक तकनीक है, उनका जो ज्ञान है, उनको हम लोग भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ सकें। यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को हम भारत के जो शैक्षणिक संस्थान है, हमारे जो अनुसंधान संस्थान, उनसे जोड़ सकें, ताकि हम दोनों देशों के बीच में एक म्यूचुअली जो बेनिफिशियल एक तरह का जो रिलेशन है उसको हम लोग ले पाए।
1: सर, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल एनर्जी पे भी नीदरलैंड जाना जाता है, उस क्षेत्र में ऐसे कुछ उदाहरण जैसे इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ का शुरुआत किया है, उस तरह के उदाहरण यहाँ से जो हम तब से शोकेस कर सकते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी की जो मिशन लाइफ है उसके संबंध में मैं कहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो कि हम लोग उसको देख सकते हैं और बहुत तरीके से हम लोग उसको अपने आप ही ला सकते हैं। जैसे अगर आपको उदाहरण दूं साइकिल, तो साइकिल का इस्तेमाल यहाँ पे इतना बढ़िया है और इतना ज्यादा है कि आप दो शहरों के बीच भी, अगर वो 40, 50, 60 किलोमीटर दूर भी हो, वहां आप साइकिल चला के भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें यहाँ पे जितने इनोवेटिव तरीके से पानी का इस्तेमाल होता है, ये देश जो है सो समुद्र से कई मीटर नीचे होने के बाद भी आप पानी, जब कभी बाढ़ होता या पानी की कभी शॉर्टेज होता या पानी सही स्थिति में नहीं होता, साफ नहीं होता, उन सब की तकनीक इनके पास है। तो मैं सोचता हूँ कि इन सबको भी हम अपने मिशन लाइफ में डिफरेंट जो उसके आयाम है, विभिन्न आयाम है, उनसे इनको जोड़ सकते हैं और भारत में हम लोग एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध हम लोग इसमें स्थापित कर सकते हैं।
1: धन्यवाद सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत
0: शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद
2: प्रोफेसर जोशी। From an Indian context, how can this partnership benefit our growth priorities? We've set ambitious goals for ourselves. We have a certain window in which we need to leapfrog towards development. And therefore, these partnerships with the smaller countries here in the region, but very, very technologically advanced, they can help us majorly in our growth priorities, isn't it?
3: Indeed, and when we look at Sweden, Tina, the partnership that we have with Sweden focuses on technology partnerships, innovations, sustainability, and of course, strategic relations. And there have been high-level interactions between the two nations. The momentum has increased, of course, both bilaterally as well as multilaterally when we look from whole Europe's perspective. And the focused areas remain green transition, smart cities, AI, and healthcare. When we look at cooperation with and collaboration with India, so there has been a lead IT initiative also for industrial transition and expanding defense industrial collaboration with Sweden. So in the areas of innovation and technology, we are collaborating in digitalization, IoT, AI with Sweden, and there have been ministerial level discussions also in early January 2026, and these discussions focused on science, tech and space exploration and collaboration between the two nations. Then green energy remains a very important area. There's a high focus on climate initiatives. That's where Sweden is also contributing a lot, and that's where India-Sweden Industry Transition Partnership has started. And the key cooperation areas include renewable energy, green hydrogen, and different types of green economy projects. When we look at defense industrial cooperation, in 2019, a security agreement was signed between the two nations. Mm-hmm. So the collaborations are continuously growing. And Swedish firms like Saab, they have been investing in local manufacturing in India. When we look at economic partnership, strong investment ties with over 250 Swedish companies are now present in India. There's a focus on manufacturing, urban development, and of course, sustainable development in different cities. And diplomatic and strategic ties have already gone to the next level, wherein we can see different regular dialogues on different international issues also, and these collaborations that span different areas, different dimensions. So the focus now remains on elevating ties in the areas of space collaboration, novice technologies, and also city development. And there is a strategic alignment wherein we can see that this relationship is very important for both the countries from a technology partnerships point of view, for making supply chains more resilient, mm-hmm. and digital transformation also. So this bilateral relationship

कार्यक्रम संदेशे आते हैं में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, अगर आप अपने पसंद के गीतों को हमारे इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। श्रोताओं, हमें पहला व्हाट्सएप भेजा है दिल्ली रामनगर से सलीम, श्रीता और जयंत ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सैनिक का ये गाना, जिसे गाया है अलका याग्निक और विनोद राठौर ने। समीर के लिखे गीत है, संगीत नदीम श्रवण का है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

भातुबस्ती से प्रियंका, मनोज और सुधीर सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म मेरे महबूब का ये गीत। गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने तथा संगीत नौशाद का है।

लीजिए अब सुनिए फिल्म बिच्छू का ये गाना, जिसे गाया है श्वेता सेठी और हंसराज हंस ने। गीत समीर के तथा संगीत आनंदराज आनंद का है। गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है बम्बू फ्लैट से शमीना इस्लाम और कविता ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

कलीगढ़ से हमें अनंत राव, ललिता और टुक टुक ने फरमाइश भेजी है फिल्म धर्मवीर के गीत के लिए। गीतकार आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है तथा गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और मुकेश।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए फिल्म आप आए बाहर आए के गीत के लिए हमें व्हाट्सएप किया है डायरी फॉर्म से जगदीश ने। गीत रचना आनंद बख्शी की तथा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। लीजिए सुनिए इनकी पसंद पर ये गाना।

0: आते हैं।
1: संदेश से आते हैं कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर हो सकती है और समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 19 तारीख तक समुद्र में ना जाएं। जनसेवाओं को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेगी, साथ ही गरज के साथ 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होगी। ये था मौसम का हाल। इसमें रात्रि के 10:30 और 11 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1938 के वैशाख माह की 26वीं तिथि तदनुसार 16 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:38 हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: अनमोल विचार।
1: कहा गया है, संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी शानदार होगी। मेहनत का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। जीवन में किया गया हर सच्चा प्रयास एक दिन सफल बनकर अवश्य लौटता है। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन धैर्य और निरंतर मेहनत इंसान को उसकी सही पहचान दिलाती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, ठीक उसी तरह मेहनत भी धीरे धीरे सफलता का रूप लेती है।